0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये रेखामय ध्वज सुधा कलशात भद्र वज्राम्बुशाम्बुरुह कल्पक शङ्ख चक्रैः भव्यैरलङ्कृत तलौ परतत्त्व चिह्नैः श्री वेङ्कटेश चरणौ

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज

0: शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, The News, read by Shagun Chopra. Myanmar President U Min Aung Hlaing arrived in Bodh Gaya today as part of his 5-day visit to India. During the visit, he offered prayers at the world-renowned Mahabodhi Temple and the historic Sujata Temple. The president will also visit various Myanmar Buddhist monasteries in Bodh Gaya. Earlier, Bihar Agriculture Minister Vinay Kumar Sinha accorded a warm welcome to President U Min Aung Hlaing at Gaya Airport. The Karnataka Congress Legislature Party is scheduled to meet in Bangalore at 4 p.m. today to elect its new leader to succeed the outgoing Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. Governor Thavarchand Gehlot has already accepted the resignation of Mr. Siddaramaiah, asking him to act as a caretaker until a new incumbent is chosen. Our correspondent reports that Mr. D.K. Shivkumar is likely to be formally elected as the new leader of the Congress Legislature Party. The 136 Congress MLAs have been asked to attend the CLP meeting. AICC General Secretary and Karnataka in charge, Randeep Singh Surjewala, will be the observer. Once the CLP chooses its new leader, he will meet the governor to seek permission to form the new government and finalize the date for the swearing-in of the Council of Ministers. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bid farewell to military service after receiving a ceremonial tri-services guard of honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer. After laying wreath at the War Memorial, General Chauhan said it was a matter of great honour for him to superannuate with a tri-services guard of honour. Marking his transition to civilian life after over 4 decades of service, General Chauhan described his tenure satisfying and excellent.
3: It's a matter of great honor for me to superannuate with the Tri-Services Guard of Honor. I thank the three services and headquarter IDS for it. With the conclusion of the Guard of Honor, I bid farewell to my colleagues in uniform, comrades in arms.

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस पायल श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत मस्त।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है। राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी, मीत, शिवांश, अनूप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फतेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो हैं गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं के पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाज़ों में। इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

0: इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी।
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
1: हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के 2-3 अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
2: ओह, डॉक्टर रामदास। गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
3: गुड मॉर्निंग बेनी। गुड मॉर्निंग।
2: कौवी तबीयत कैसी है?
3: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं। अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
3: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
2: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
3: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
2: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
3: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ।
2: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
3: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
2: अच्छा?
3: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
2: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
1: नमस्ते डॉक्टर।
2: ओ नमस्ते,
3: कहाँ गई थी तुम?
1: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
3: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
2: मई पत्नी जी ठहरी, उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
3: हम दोनों के लिए।
1: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
3: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
2: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ, फिर मिलेंगे।
3: अच्छा,
1: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं, हम ऐसे हम वैसे?
3: इसमें हर्ज क्या है, सच तो यही है ना?
1: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
3: इसमें शर्म का है कि क्या? मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है। देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
1: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें, इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ, शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: ए, डेज़ी, इधर आओ ना।
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: अरे, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तुम ले जाओ बेनी, ले जाओ ना तुम। अरे, तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिरी ना से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।

0: गिटार बजाने में।
1: तो आप कलाकार भी हैं?
0: कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ।
2: आप डॉक्टर लॉरेंस है ना?
1: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ।
3: तुम बेनी हो ना?
0: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
3: हाँ मैं लॉरेंस हूँ भाई।
0: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
3: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
0: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका लॉरेंस।
3: मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
0: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
3: तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ?
0: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
3: यही कोई 14 या 15 साल।
0: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में।
3: Exactly.
0: गजब की याददाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
3: नमस्ते। नमस्ते, तो मैं देखते ही समझ गया था
2: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
3: सब वो बातें रहने दीजिए। अब बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
0: चेस्ट में पेन है।
3: हाँ।
0: दिल की तरफ भी पेन है। सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
2: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
3: हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
2: जी,
3: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
2: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
0: डेजी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
3: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
0: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
3: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
0: बाय।
2: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
0: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
2: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
0: अरे गिरिजा, तुम?
2: आप यहाँ?
0: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
2: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
0: जरा शिष्टता से बात करो।
2: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
0: जरा आहिस्ता बोलो।
2: मुझे पहचान लिया आपने?
0: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
2: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
0: तुम ऐसा सोचती हो?
2: सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
0: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
2: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी।
0: हा?
2: इसका दर गिर तो नहीं गई हूँ?
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
2: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
0: क्या?
2: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
0: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
2: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक टेरर थे। चेहरा?
0: मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है?
2: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
0: तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
2: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
0: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज आज चुप हो जाओ।
2: तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा?
0: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।

0: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रहे। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। दो तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती, मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
1: मुझे कुछ नहीं कहना है।
2: लेकिन मुझे तो कहना है। कल जहां बात रुक गई थी, मैं वहीं से शुरू करता हूं।
1: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
2: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
1: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
2: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
1: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
2: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया। बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
1: अच्छा।
2: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
1: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
2: कितने रुपए खर्च हुए?
1: करीब 600, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
2: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकते हो। डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
1: क्या?
2: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
1: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
2: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरिजा। मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
0: गिरिजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
3: वो बेनी कहाँ है?
0: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
3: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
0: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
3: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है। वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना। मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
0: डॉक्टर, डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
4: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
0: डॉक्टर, मुझे बहुत
5: डर लग रहा है डॉक्टर।
4: लेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
5: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
4: डेजी, धीरज रखो, डेजी धीरज रखो। बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अल्लो बेनी आ रहे हैं।
6: आइए आइए, कहाँ पे जाना?
7: ओ डॉक्टर,
6: भाई जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। इस पैकेट में क्या है?
7: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया?
6: भाई रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
7: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
6: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
7: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
6: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब। सी यू अगेन, बाय।
0: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
7: तुम्हारे लिए एक चीज है।
0: अच्छा, देखो तो।
7: लो, देख लो।
0: साड़ी, ये अब काहे को? और यहाँ
7: मेरी ओर से प्रेजेंट।
0: प्रेजेंट?
7: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
0: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी, हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
7: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है, तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर, साड़ी पसंद आई?
0: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
7: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़ी ना समझ हो, तुम अगर ऐसी ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं, रो मत। देखो अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो, रूठ जाऊं? नहीं नहीं ना। अच्छा तो फिर हंस दो। देखो ये ऐसे ऐसे।
0: अरे क्या क्या हुआ आपको?
7: डेजी,
0: यहाँ लेट आइए, लेट आइए ना। बेनी बेनी बेनी, डॉक्टर डॉक्टर! कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा। लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से धर गया।
8: Oh, no.
0: सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
8: आखिर ये हुआ कैसे?
0: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा। सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे, टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
1: डेजी, ये सब क्या है, छोटे बच्चों की तरह?
5: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
1: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
5: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई, मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
1: ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे बेनी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
5: गिरजा
1: डेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठकर बातें करेंगे।
0: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस, विवाह सूत्र में बंध गए।
8: अच्छा,
0: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
9: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
10: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
11: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
10: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
12: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
10: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
12: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
10: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
13: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
14: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
13: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
15: जो शहीद

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ है अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम करो हमको, कोई इसकी दवा जदी है तो कहो।
1: इनसे बातचीत कर रही है विधि जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओं चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चुहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
0: जी,
1: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी,
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है।
0: हाँ।
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ।
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको

0: अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ घर में भी हाँ। बाहर भी फ्रेंड्स के साथ भी और जब बोलते हैं गुंजा गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
1: अच्छा।
0: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
1: जी
0: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी वो मुझसे सुनते थे अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की तो वो सब बताती थी जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने तो दादा ने डाल दिया वो और जो वृक्ष खिलाई अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
1: यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं और गुंजा
0: करती रहूंगी।
1: सच बात है वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका जो आपने किया है उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी लोगों के दिलों को छू रही थी और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
0: हाँ नहीं उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
1: अच्छा।
0: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
1: जी
0: उन्होंने बस एक ही चीज बोली तुम जैसी हो वैसी रहना ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं एक्टिंग कर रही हूँ मैं कहाँ करूँ मुझे समझ नहीं आया शुरू में तो जब शूटिंग खत्म हो गई मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई।
1: अच्छा।
0: आपने तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे इसी को एक्टिंग बोलते हैं तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
1: जी।
0: लेकिन चलिए जो बने लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
1: जी।
0: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
1: अरे वाह।
0: हाँ
1: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी आप अभिनेत्री आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि हाँ, आप अभिनेत्री बनेंगी
0: हाँ।
1: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
0: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
1: अच्छा।
0: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे कानपुर में मैं थी
1: जी
0: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना लंच ब्रेक वगैरह तो बोलती थी बुलाओ साधना को और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ अभी वो वाला सुनाओ फरमाइशी चलता था गीत तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
1: अच्छा।
0: हाँ तो ये था रुतबा था मेरा अपना
1: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि हाँ। साधना गाओ लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
0: देखिए मैं आपको बताऊं मैं 3 साल की थी 3-3.5 साल की जब मैंने अचानक एक गाना गाया उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया मेरी बेटी देखो गाना गा रही है मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए
1: है ना
0: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उस समय आवाज अलग थी मेरी मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी
1: उतनी बुलंद आवाज।
0: हाँ बुलंद आवाज थी
1: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है तो वो गीत हम आपको विभिन्न भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थी, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य अभिनय बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए हों।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया।
0: अच्छा,
1: वो मेरी बहन करती थी।
0: अच्छा,
1: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा,
1: अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत दुखद घटना है।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्य की हैं उस जोगीरा में, हमने
1: देखा जोगीरा में मार खा के की हूं।
0: वो किस्सा भी जरा बता दे।
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी
1: हमारे डांस डायरेक्टर
0: जी,
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो नहीं थी। तो उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम और घूम के आना था। मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना। लेकिन डंडा मारा पैर में, एकदम ठीक कर दिया मैंने।
0: अच्छा, एक डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते हैं,
0: लाठी के भूत।
1: लाठी के भूत मारा पैर में, बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी।
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया,
1: और क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
0: हाँ,
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक मटक के डांस किया उसने, फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे, इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप एक सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में।
0: अच्छा,
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे। तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी, छोटे छोटे मोमेंट्स।

0: अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ, तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
1: अच्छा
0: हाँ, ये है, ये फ्रेम है। ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर कैमरे की, तो यही सचिन और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सब बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
1: अच्छा,
0: तो 2-3 चीजें ये सीखे कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है,
1: हाँ।
0: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती थी तो वो तो आ गया
1: जी।
0: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
1: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
0: मुझे लगता है कि पहली बात, एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए, तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया कम हो गया, पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो, पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को, हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
1: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए ऐसा आपका कहना है। हाँ। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है, ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
0: हाँ,
1: एक
0: तो
1: ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना,
1: हाँ
0: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
1: जी,
0: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी
1: जी,
0: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता, नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
1: जी,
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूं
1: जी,
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना, नहीं करना ही एक्टिंग है।
0: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ, ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ। हाँ, कि
1: जी जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो साधना जी हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं,
0: हाँ,
1: तो
0: हाँ।
1: मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए।
0: अच्छा, ऐसा
1: जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं,
1: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
0: और बहुत मीठा संगीत है,
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।
2: कुछ

0: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं। तो
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी, तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा।
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना, तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वाज सेटिस्फाइड जो थी, और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं। हाँ, तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है।
0: जी, जी जी।
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
0: जी।
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा
0: जी।
1: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
0: नई
1: प्रोडक्शन में
0: जी, जी।
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है।
0: हाँ।
1: बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
0: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे?
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।
0: अच्छा।
1: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं
0: जी।
1: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं। बहुत

0: सी चीजें, लेकिन आजकल शॉर्ट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत
1: आदत लड़कियों से गिरी रहती थी
0: तो टाइम निकल जाता है। बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
1: जी।
0: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पे।
1: हाँ। नहीं वैसे आप बहुत हॉट है, शॉल की जरूरत नहीं। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद जी।
0: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
1: जी,
0: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकराभरणम फिल्म आई थी
1: जी,
0: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकराभरणम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में
1: जी,
0: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह, हाँ तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल
1: नीचे का जी।
0: लेकिन वो ले गए
1: जी
0: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई, मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम, मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन टू मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं,
1: वही तो सेम फिल्म,
0: हाँ सेम फिल्म लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल, मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी जुड़ना ऐसी फिल्म
1: जी,
0: से
1: जी।
0: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहां पे
1: जी,
0: साउथ में सरगम ये सब उन्होंने बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन हाँ तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
1: जी,
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद,
1: हाँ जी जी उसके बाद ही,
0: हाँ तो मस्ती में की बस और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
1: जी,
0: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
1: अच्छा,
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
1: जी,
0: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, तो वो फिल्म की। उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्म नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के दादी बन के चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
1: हाँ।
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी फिर बच्चों को देखना ये सब
1: जी जी।
0: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी
1: जी, जुगनी
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म है,
1: बहुत अच्छी
0: है। तो ये नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब, तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
1: जी।
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल।
1: अच्छा,
0: हाँ तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं,
1: मिलके काम कर रहे, पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं।
0: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको ये साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है, तो उन्होंने मुझे बुलाया आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ, तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
0: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
1: अच्छा,
0: हाँ क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे कि ऐसा ही करना है। और कई कई जगह तो वो आए पैर वैर छुए बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी
1: जी। हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा।
0: पति का नाम राजकुमार
1: ही नहीं, राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
1: अच्छा, हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
0: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा नहीं करूंगी। तो ये बिहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है। तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम। हाँ। और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने जी। तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने। इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उस लिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जा, इनको इतना गुस्सा है। बोले शादी करके बताता हूँ इसको, कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली।
0: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर।
1: हाँ।
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
1: अच्छा,
0: फिर मेरी
1: वही लड़की हीरोइन चाहिए। हाँ। थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी।
0: होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
0: ये रात भीगी भीगी,

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने की है यूपी की भोजपुरी फिल्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की है,
0: वो वाली की है ना गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी,
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना इस एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो ही प्यारी चढ़ाई वो
0: जी,
1: जो कि ब्लॉकबस्टर आज भी ब्लॉकबस्टर है। तो उसको मेरे फादर ने को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से
0: जी,
1: गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैंने काम किया
0: जी,
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको
0: इतना लाइक ही बना लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी जी, लेकिन
0: बहुत प्यारी है।
1: हाँ, वो
0: बहुत अच्छी फिल्म जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहां की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी?
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा
1: हमें अपनी जो बाइयां आती थी उन सबसे तो
0: मतलब वो चाट और लस्सी खाते पीते
1: हाँ जी, क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। सिर्फ मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने।
0: अच्छा।
1: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
0: सरदार खड़े हैं और
1: तो हमारे पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा।
1: हाँ, हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी
0: जी,
1: हाँ ये काफी फर्क है
0: जी।
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है। हाँ। अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या?
0: अच्छा,
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, मुंजा को कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे?
1: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते हैं
0: जी,
1: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी
0: जी,
1: और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था चंदन चंदन ऐसा
0: बहुत,
1: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है।
0: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इसकी?
1: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
0: रविंद्र जैन वहाँ पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे, गाया जा रहा होगा।
1: हाँ।
0: कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते
1: समय? बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा। अगर आप
0: जी बहुत खूबसूरत गीत है
1: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था, और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे
0: जी,
1: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
0: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद?
1: बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो।
1: बट जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे
1: भैया, मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था, उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने
1: में, और सुना रहे थे पसंद है नहीं है, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़िए नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो
0: जी,
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी माय गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
0: शब्द भी लिख लेते थे
1: एक सेकंड में
0: 30 गाने एक समय पे,
1: 32 होंगे 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
0: लगातार,
1: दादा कह रहे नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया, तो उनसे
0: कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
1: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं, और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए, तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता,
0: ये रविंद्र जी ने
1: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
0: जी। और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो आनंद ही अलग आता होगा,
1: वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है,
0: अच्छा
1: तो आई थिंक वो अखड़पन में सब कुछ सीख गई, अल्लड़पन कहते ना
0: ये, कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई बचपन से।
1: ये बात है, मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत

0: उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
1: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, लगेगी तो संभाल लेना। बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना नई रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे ही घूमते?
0: नहीं नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अभी शूटिंग भी करेगी।
1: हाँ।
0: तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था।
1: अच्छा।
0: नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें। लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो, अगर अच्छा है तो।
1: अरे वाह,
0: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी। हाँ। तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने
1: एक
0: बोल,
1: बार दिया। बोल दिया।
0: तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
1: तो यानी आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों जगह।
0: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
1: जी,
0: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहे
1: जी। बिल्कुल साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है। पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे, हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है?
0: नहीं नहीं, मेरा बेटा तो बहुत दूर है।
1: अच्छा,
0: उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
1: जी।
0: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की हैं
1: जी,
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
1: जी,
0: अनुपम जी ने,
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर, जिस थिएटर में लगी स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
1: हाँ, तो उस समय वो चल,
0: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
1: मतलब तो, उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
0: नहीं, मैं करती भी नहीं,
1: क्योंकि मेहनत करो अपनी,
0: अपनी मेहनत करो,
1: ये बहुत अच्छी बात है।
0: क्योंकि मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
1: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
0: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना, ये सुपर 30
1: जी,
0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोले 100%।
1: हाँ,
0: अब देखते हैं क्या होता है।
1: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया।
0: हाँ।
1: और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती है। हाँ,
0: ऐसा
1: हम मान के चलते हैं। बिल्कुल, ये जगह बड़ी,
0: हाँ,
1: बड़े पवित्र लोग यहाँ, हाँ, पर आए हैं।
0: हाँ,
1: आप जानते हैं कि यहाँ, हाँ, पर अभी आप तस्वीरें देखते, हाँ, हुए आ रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है यहाँ की।
0: हाँ, लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं
1: जी,
0: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते ना, बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ,
1: ऊर्जा सकारात्मक।
0: हाँ, वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको, सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है।
1: हाँ।
0: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में हैं, या मुझे फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा

0: मैं जीऊं या मर जाऊं।
1: अरे
0: हाँ, मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीज़ हुई कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था।
1: क्या बात है।
0: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है तो, क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई है तो कुछ गाने हम
0: मैं
1: भी सुन लें।
0: कोशिश करती हूँ। चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है
1: जी।
0: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज से सीखा है
1: जी।
0: उनका गाना गा देती हूँ
1: जी।

बरकत लाऊंगे गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता।

0: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर दो घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं
0: जी।
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ, हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम ये होता ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए
0: और बच

0: बचता कभी नहीं,
1: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती माएं
0: जी।
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई
0: जी।
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि हाँ। आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है।
0: हाँ।
1: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, एक कच्चे धागे करके। अच्छा। और साड़ियाँ, वीव्स वगैरह, मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है ये, ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें, तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी है पहेली
0: जी,
1: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। बहुत सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है।
0: अरे वाह।
1: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब देखें।
0: फिल्म है कैसी है पहेली।
1: कैसी है पहेली,
0: जरूर से हम सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है। और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आए, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
1: अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगता है, विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
0: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा लगता है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है। तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

आकाशवाणी है। अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान ने खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध

0: प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: గారు, మీరు లలిత గీతాల కార్యక్రమంలో లలిత గీతాలు విన్నారు. ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్రం సమయం 8:45 వస్తుంది. కొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో వార్తలు వింటారు. 9:00 ఆంగ్లంలో వార్తలు, 9:15 స్పాట్ లైట్. ఈ మూడు కార్యక్రమాలు ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి ప్రసారమవుతాయి. 9:30 ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్ర కార్యక్రమాలు వింటారు. 10:00 అఖిల భారత సంగీత సభ కార్యక్రమం ప్రసారమవుతుంది.
1: విశాల్ శర్మ. मुख्य समाचार. कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया. बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे. मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की. सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे. और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया. अब समाचार विस्तार से. कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना. इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया. हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.
2: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए. इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की. तब तक CLP मीटिंग रुकी रही. जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि DK शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं. इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और DK शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा. अब DK शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे. सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु.
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अडलेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने

0: का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों

तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड। 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर

0: इंसान एक संभावित पत्रकार है, लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मार्तंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधावर्षन या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको पैगाम आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की, पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे, और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30-35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा यह मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद रखना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वो है विकास पत्रकारिता, विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आपको कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
0: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते ही मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी की 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। विवाह, निशा, निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहां का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहां अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहां का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थी बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया, और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहां विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहां शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।

0: कमाल कर रहे हैं आज के ट्रैवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक एआई और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं। यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपकी सोल ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
2: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं। हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ गई जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है। आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है। आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाए, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का। हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। तो उससे आप में लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हो जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा। और अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस नहीं है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
1: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला है, इससे ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
2: अच्छा।
1: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपनी लाइफ में कि हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कॉन्टेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
2: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए? और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
1: हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती है आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से, लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोज देख रहे हैं, वो एक दो वीडियो आ गए थे इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे।

0: हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
1: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी, तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग, पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम, जो फिर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है। कुछ जो अभी यूथ भी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनके मैं आपको बता सकती हूँ जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट है।
0: देखो, जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कॉन्टेंट देखते हैं तो हर एक कॉन्टेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कॉन्टेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वर्ड्स ऑर्डर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं। उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
2: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी में बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
0: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था, हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है। जब हम वहाँ पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मुझे, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी, आपने पूरा इंडिया घूमा, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना, इसमें ही बहुत डाइवर्स है,
1: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो मेन
2: बहुत ही मददगार होते हैं।
1: हाँ, एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है लाइक ट्राइपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
0: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो न्यू क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवर थिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है सबसे पहले हमें उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमरा खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारे उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
1: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड
0: ये ऐसे जितना छोटा हो सके, मतलब
2: कॉम्पैक्ट रखो।
0: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
1: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
2: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम

0: से बात करते बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वाली वीडियो बनाई थी ना उसमें जो आइसक्रीम खाई थी वो बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
1: आपके पास जो है जैसे है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
2: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, न उम्र की, न दूरी की, न परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
3: जी धन्यवाद।
2: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
3: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रखे सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
2: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
3: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मींस बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है। खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक उच्च कोटि की अध्ययन सामग्री मिलती है, जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं उस पर ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है।
2: जी
3: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहां पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
2: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह से रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, अगर इग्नू की बात करें तो?
3: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है। कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है, 10+2 आपने किया गया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे, और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ। नवोदिता को अनुमति दीजिए।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मुकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मुकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मुकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मुकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूड कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
0: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्यले तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो ना जियरा मोरा, और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एकताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्य लय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो न जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग विद अ द्रुत कंपोजिशन सेट टू एकताल विद द लिरिक्स मानो नहीं तुम्हारी बात। अकंपनी हर ऑन द तबला इज गांधार राजहंस एंड ऑन द हारमोनियम इज प्रमोद बोरगांवकर।

0: सुनी थी विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना की बोल है साजन बिन सुनी एरी आली और द्रुत एक ताल में निबद्ध बंदिश की बोल है राग सन रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री दैट वॉज मधुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारो बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्यलय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: सुश्री स्मिता मुखाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुखाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राजहंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी और

मिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।